नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी तयायो सूरा तुगरे शिवा ठे आलवी तुया प्रमी दिखा तने हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वान को ने बाबी पहलू एंड यू बी में मतिया मुमा